पर सूतक मनिए सत्य सूतक होए, गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया।

0: सब सूतक परम है, दूजा लगे जाए जमण मरना हुक्म है, भाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है, दितों रिजक संभाहे नानक जिनी गुरमुख बुझिया,
1: तिना सूतक नाहे पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाहे,
2: जिस विच वड्डिया वड्डियाईया सम्मिलत नदरियाईया, जात सुपाणा तमन वसाईया, करो कुमस्त कत धर विचो मार कड़िया बुरियाईया, सह तुठे नौ ने दबाइया नौ।

कौड़िया पे ही करना कियो कला पे ही तै तारी है, देखे कि अपना दर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सबको आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहिब ने विसारी है, आपन हती अपना आपे ही।

करे कनेरियां खसम ना पाए साथ, आप गवाए सेवा करे ता कुछ पाए मान, नानक जिसनों लगा तिस मिले, लगा सो प्रवान महला दूजा।

आप करा साक्षी फिर आप कराए मां एक ना गली जंजीरियां तुरी चरे बसिया आप कराए करे आप हो क्या स्व करी पुकार।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य

0: गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज थे। आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत।
2: कबीर, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। एक कथन संत कबीर जी दा है, प्रभु दे अनिन प्यारे भगत संत कबीर जी। भगती लहर दे संतां विचों बड़े महान क्रांतिकारी संत मन्ने जांदे ने। आप रामानंद जी दे प्रमुख चेले सन। कबीर जी दियां रचनावां विच दोहियां ते श्लोकां दे विच चंगा इंसान बनन ते दूजे नाल बराबरी दी भावना नाल जीवन बिताउण दे बड़े ही लासानी सिद्धांत मौजूद हन, जिहड़े हर प्रकार दे मन नूं चंगे पासे मोड़न वास्ते असरदार सिद्ध हुंदे ने। संत कबीर जी दे विचार अनुसार सारा संसार परमात्मा दे नूर तों ही उपजिया है और सारे एक समान हन। सारियां विच उस प्रभु दी ही जोत है ते सब कुछ उसका कीता होया ही हो रहा है। जेड़ा बंदा इस तत्थ नूं पछाण लैंदा है वो उस प्रभु नाल अपेता स्थापित कर लेंदा है, उसका इस लोक विच आउना सफल हो जाता है। कबीर जी दे श्लोकां विच मूल उपदेश हन जो कि इंसान नूं सही जीवन जुगत प्रदान करते हैं। कबीर, मानस जन्म दुलंब है, होए ना बारंबार, ज्यों बन फल पाके पोए गिरे बोहर ना लागे ढार। इंसान नूं हर कदम ते सुचेत करती है कबीर जी दी बाणी। कबीर, मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात हाथ दीप कुएं परे। वेदा शास्त्रा तो सिक्ख्या लेके भी इंसान अवगुण करता है। ये तो इस तरह की बात है, हाथ विच दीवा भी है, रोशनी का साधन भी है, फिर भी असी खूह दे विच डिग पईए। संत कबीर जी की बाणी विचों मनुखां प्रति स्नेह भली भांत झलकदा है। जे किते संसारक यात्रा करदे होए अंत समय प्राण त्यागन की बात होवे ता भली भांत कबीर जी फरमाते हैं कि प्रभु का प्यारा बेशक मगहर की धरती ते प्राण त्यागे फिर भी वो सुरगां दा भागी ही होंदा है। पर जे कोई बनारस विच रवे और मनो कठोर होवे बनारस की धरती ते प्राण त्यागे ता वो नरक तो नहीं बच सकता। कबीर जी का कथन है, मनो कठोर मरे बनारस नरक ना बांछिया जाई, हर का संत मरे हाड़म्बे ता सगली सैन तराई। उंज तां कबीर जी दी बाणी कबीर बीजक नां दे प्रसिद्ध ग्रंथ विच भी सुभायमान है, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी विच कबीर जी दी बाणी 541 रचनावां दे रूप विच सुभायमान है, जिन्हां नूं आधार बना के कोई भी मनुख उस रब्बी रहमत दा पात्र बन सकता है।
1: आओ हुण सवन करदे हां भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

तुसी सर्वण कर रहे हो भक्ति संगीत का प्रोग्राम आराधना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोए।

0: आराधना। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 800 किलोहर्ट्ज़ पे आकाशवाणी का
1: कहो नानक
0: खेतीबाड़ी प्रोग्राम।
2: खेतीबाड़ी

अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुलदेवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुलदेवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहां पर वर वधु एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्रीराम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयन्ती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचलन कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारतपरं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजोन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायि अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन संबलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एतं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस् देशस्य समकक्षेन डॉक्टर नवीनचन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशसस्य च वर्तमानसहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस् वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये, वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षि अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडीनगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षि अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीयव्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्करसमूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानाम् आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस् देशस्य एथेन्स् नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकम् आर्थिकसहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।
2: नमस्कार।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 8

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियो, आज दिन है 29 जून दा, और आज दा दिन साडे जीवन लई बहुत जरूरी है और बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आज दा दिन पूरी दुनिया विच एक बहुत ही खास मकसद दे नाल मनाया जाता है, जिसनों असी कहिंदे आ इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, यानी कि अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधी खेतर दिवस। हो सकता है नाम सुनने नूं ना बड़ा वैज्ञानिक या मुश्किल जिहा लगे, पर यह सीधा साधा साडी धरती ते साडे मौसम ते साडी जिंदगी नाल जुड़िया होया है। आओ इस खूबसूरत दिन बारे थोड़ी जी जानकारी होर लईए। जेकर असी सौखे शब्दों में समझिए तो साड़ी जिहड़ी धरती है ना, इहदे विचकारों लंघण वाली भूमध रेखा दे आले दुआले जो इलाका है, जिसनों असी कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अते मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन दे विचकार दा हिस्सा कहिंदे आ, उसनों ट्रॉपिक्स किया जाता है। तो साडा प्यारा देश भारत इस खेत्र दे बहुत नेड़े है और इस खेत्र दा हिस्सा भी है। यह इलाका है जिथे सूरज दियां किरणां सीधियां पैंदियां ने, जिथे बहुत ज़्यादा मीह पैंदा है, जिथे दुनिया का सब तो ज़्यादा संघना जंगल है, उत्थे असी कह सकते हैं कि वह जिहड़ा इलाका है वह इलाका साडा उष्ण कटिबंधीय खेत्र है। सो तो की तुसी जानते हो कि दुनिया की लगभग अद्धी आबादी यानी कि 40-45% इसे ट्रॉपिकल खेतर दे विच रहिंदी है। इस तो वड्डी गल है कि दुनिया की 80% जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की जे आप गल करिए, तो वक् वक् तरह के पशु पंछी अनोखे जीव अते रंग बिरंगे पौधे ये हिस्से विच आते ने, जिन्हों कहा जाता वै उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिक्स। तो कितनी ज़्यादा महत्वता रखती है अमेजन दे संघने जंगल होण या साडे देश दे पछमी घाट, यह सब इसे खेतर दी देन है। ये इलाका साडी धरती दे फेफड़िया वांगर काम करदा है, जो पूरी दुनिया नूं साफ हवा ते ऑक्सीजन देंदा। पर सोचियो अज दा ये दिन सानू सिर्फ इस खजाने बारे दसण लई नहीं, बल्कि सानू ये चेतावनी देण लई भी है मनाया जांदा है कि अज जलवायु परिवर्तन, जंगलों की अन्नेवा कटाई अते वधदी गर्मी कारण यह खेतर बहुत वड्डे खतरे दे विच है। जेकर यह हिस्सा प्रभावित होंदा है तो पूरी दुनिया का मौसम चक्कर जिहड़ा है वह विगड़ सकता है, जिसका असर साडी खेती पानी और सब ते है। साडे बजुर्गों ने ते साडी गुरबाणी दे विच भी सानू कुदरत का सत्कार करन लई कहा गया है, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत्व। जदों असी हवा नूं गुरु, पानी नूं पिता, धरती नूं माता दा दर्जा देंदे आ, तां इह सारी संभाल करना भी साडा सब तो वड्डा फर्ज़ है। अज इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स ते असी सारे अपने पद्धर ते एक छोटा जिहा योगदान पाउण दा प्रण कर सकते हैं कि वधो वध पौधे लगाइए, पानी की बचत करिए अते प्लास्टिक की वरतों जिहड़ी है वह घटो घट करिए। कुदरत बहुत खूबसूरत है सरोतियों, ये सानू बिना मंगे ही सब कुछ दे देंदी है, बस बदले विच थोड़ा

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के

0: दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4th वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331

0: 7111-0113-7101-0106 और 0113-3144-44। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नवभारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा। बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो। माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड सेशल्स नेशनल डे सेलिब्रेशंस एज गेस्ट ऑफ ऑनर, ऑल्सो होल्ड्स टॉक्स विद हिज मॉरिशियस काउंटरपार्ट नवीन चंद्र रामगुलाम। United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish AFIH Pro League

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोण खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 46 आज़ादी के 50 साल समारोह में मुख्य मेहमान वजो शामिल हुए हैं। श्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम नाल मुलाकात भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शामी राष्ट्रपति भवन विखे साल के दूजे रक्षा सम्मान समारोह में बहादुरी पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अज नवी दिल्ली में संपूर्ण बाल सेहत प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। अमरीका ते ईरान जवाबी हमले रोकण अते कतर की राजधानी दोहा विच गलबात मुड़ शुरू करने की सहमत हो गए हैं। तो भारतीय पुरुष हाकी टीम ने लंडन में FIH प्रो लीग के मैच में पेनल्टी शूटआउट राही इंग्लैंड 3-2 नाल हरा दिता है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य मेहमान वजो शिरकत की। वह यह सम्मान हासिल करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। भारत की जमीनी ते समुद्री फौज दीयां टुकड़ियां ने भी रस्मी परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर भारतीय समुद्री फौज के जंगी जहाज INS तरकश और INS इक्षिक राजधानी विक्टोरिया में तैनात रहे, जो भारत और सेशल्स विचकार मजबूत दोस्ती दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने सेशल्स के लोगों को आज़ादी दिवस शुभकामनाएं दीं। वो राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के सदे से शनिचरवार को सेशल्स पहुंचे सन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह

0: नमस्कार श्रोतियो,
1: लैके असी हाजर हाँ प्रोग्राम महक पंजाब दी। एह प्रोग्राम है जिदे विच चोणवी पंजाबी फिल्मां दे चोणवे गीत तुहाडे नाल सांझे कीते जांदे ने, और ओह गीत जिहड़े तुसी भुल चुके हो, कुछ याद ने, कुछ अणपछाते गीत ने, और उहनां दे नाल तुहानूं रूबरू कराया जांदा है, तुहाडे तक ओह गीत जिहड़े ने ओह पहुँचाए जांदे ने। ते सब तो पहला जिहड़ा गीत तुहाडे नाल सांझा करन जा रहे हैं, उस गीत नूं लिया गया फिल्म जिगरी यार दे विच्चों, और इस गीत नूं गाया है गुरदास मान होरां ने। ते आओ फिर सुनिए प्रोग्राम दी शुरुआत दे विच ये गीत।

मेहरबान दोस्तो, मैं आप सब सूझवान स्रोतियां ते दर्शकां दा बेहद शुक्रगुजार हां जिन्हां ने अपने निमाणे जे मान नूं मान बख्शा है। ते मेरी भी आप सब लई इहो दुआ है, जेड़ा अज तक होया ना होवे, मैं ऐसा थोनू प्यार दियां। मेरी उम्र हजारां साल होवे, हर साल थोड़े तो वार दें। सो गीत पेश है कि जदों दिलां दी वही ते इश्क दे खाते खुल दें, ते हर दिल चो आवाज की निकलती है।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज़ ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

गाया है बी पराग खोरा ने, और बी पराग खोरा दी है आवाज़, फिल्म है जी सुफना, और ये बोल लिखे ने जानी ने, और इनू कंपोज भी कीता है जानी ने। तो आओ सुनते हैं बी पराग दा गाया ए गीत।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
2: जेड़ी गल असी बोलचाल दी भाषा च नहीं कर सकते, लोक गीतां दा सहारा लेके बखूबी कह दिंदे आ। लोक गीतां दे वख वख रूप ने, जन्म तो लैके अंत समय तक, जिन्हां विच लोरियां

माता दियां भेटां लोक गाथावां कविश्रियां पे ते माया शामिल है। लोक गीतां दे इना वक वक रूपां दा आनंद तुसी उठा सकदे हो आकाशवाणी जलंधर तो पेश होण वाले प्रोग्राम रंगली धरती च दिने 2:30 बजे।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजय, कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: नमस्कार श्रोतियों, थोड़ा दोस्त गौरव एक बारी फिर थोड़ा सारिआं दा इस्तकबाल करता है। और हुण असीं शुरू कर जा रहे हैं गज़लां दे इस प्रोग्राम नूं, जिहदे विच सब तो पहली गज़ल तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे ने मुकुल गिल। ते आओ फिर आवाज़ मारदे हां मुकुल होरां नूं कि आके तुहाडे सारिआं दा इस्तकबाल अपने तरीके नाल करन।

झूम के जब रिंदों ने पिला दी, शेख ने चुपके से दुआ दी, एक कमी थी ताजमहल में।

हमने तेरी तस्वीर लगा दी। प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा सारियां दा अपना मन पसंदीदा आकाशवाणी जलंधर ते गजलां दा प्रोग्राम। ते आओ हुण सुनदे आं चंदन दास दी गाई एक गजल।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा। लड़ीवार
0: नाटक होया।

0: 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
1: प्रोग्राम चल रहा है हैलो फरमाइश और साढ़े नाल साढ़े कॉलर दोस्त जुड़े हुए ने, आओ उन्हां दे नाल राबता कायम कर लैने आ। नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
2: नमस्कार जी, मैं राकेश कुमार बोल रहा जी, ब्लेड कोटले तो।
1: राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम हैलो फरमाइश दे विच। तो राकेश जी, मौसम दे की हाल चाल ने?
2: मौसम बदलवाई हुई भी है जी अज।
1: अच्छा जी, मतलब मौसम ठीक है?
2: हाँ जी, हाँ जी मौसम ठीक है, गर्मी घट है थोड़ी जी।
1: चलो वधिया जी, फिर अज गीत केड़ा सुना रही हो तुहानू?
2: फिर भाई सच्चा झूठा ना सुना रही हो।
1: अच्छा जी, ये सच्चा कौन ते झूठा कौन है भी दस दियो।
2: ए गीत दसूंगा जी।
1: जी जी, सच्चा झूठा दा केड़ा गीत सुनना है?
2: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो
1: जी। हाँ, मोहम्मद रफी ते लता मंगेशकर दा गाया गीत सुनना चाहते हो?
2: धन्यवाद जी।
1: जी लो, तुहाडा गीत आ रहा है, कॉल कीती है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां तियां तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: ਜੇਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार देंगे। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और

0: कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को दो जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले दो जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। इस आपदा में 3,238 लोग घायल हुए हैं और 3,142 परिवार प्रभावित हैं। हजारों लोग अब भी दिन रात खोज और बचाव कार्यों में लगे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थयात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों का आकलन किया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। कनाडा का अगला मुकाबला शनिवार को ह्यूस्टन में नीदरलैंड्स या मोरक्को से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, FM 100.8 मेगा हर्ट्स, FM 100.9 मेगा हर्ट्स, FM 103.6 मेगा हर्ट्स, अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो ते नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते हो। प्रोग्राम धमक जलंधर पेंदी लैके हाजिर तुहाडे सारयां दी अपनी दीपाली वधवा वल्लों प्यार भरी मुस्कुराहट भरी नमस्कार अदाब ते सत श्री अकाल।

0: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: प्रोग्राम चल रहा जी धमक जलंधर पैंदी, और ये प्रोग्राम तुसी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो सुन रहे हो। फरमाइशां मेरे बिल्कुल सामने कंप्यूटर स्क्रीन दे उत्ते। सब तो पहले जिन्हां ने भी मैसेज भेजे मैं ताड़ियां मार दी हां, तुहानू पता ही है। पहुंचे ने जी दिल्ली तो, हाय दिल्ली वाले सारे ही एन कान लगा के बैठ गए भी दिल्ली तो सब तो पहले किन्ने मैसेज भेजे है जी। कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जौड़ा ते सीटी दीवाना ने, लाओ जी इन्हां लई ताड़ियां। वैसे 10 बजे बड़े सारे मैसेज पहुँचे ने, पर साढ़े कंप्यूटर ते जिन्हां का सब तो पहले आया वह इन्हां दा आया। अगला मैसेज लैके पहुँचे मोहाली तो अमरदीप सिंह सैनी, लाभ कौर, जीवनजोत सैवी सैनी, निदिस ए पहुँचे ने जी कनेडा तो, ते सारा ही सैनी परिवार साढ़े आकाशवाणी च पहुँच चुका। अगला स्नेहा लैके हाजिर ने जी पिंड शाहपुर मेहतपुर तो बूटा सिंह, विजयपाल सिंह, अजयपाल सिंह, पाहुल जोत, अनाहत कौर, लवप्रीत कौर, परविंदर कौर, हरप्रीत कौर, गगनदीप सिंह। और प्रोग्राम दे विच सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली तो गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले पहुँचे ने। पिंड अलीपुर नेड़े छीटा वाला तो प्यारा सिंह सिद्धू, टेलर मास्टर मनदीप सिंह सिद्धू, बेटा रणदीप सिंह सिद्धू ए पहुंचे इंग्लैंड तो, क्या ही बातें ने। अगले सुनेहे नाल हाजिर ने जी दर्शन सिंह, अवतार सिंह, जबरजंग सिंह चीमा, पिंड अलूणा म्याना, तहसील पायल, जिला लुधियाना तो पहुंचे ने। नमी न्यू माधोपुरी लुधियाना तो पहुंचे ने जी, लुधियाने वाले भी बड़ा प्यार कर दिया आकाशवाणी जलंधर नो। सुरिंदर शर्मा, सीमा शर्मा, प्रिंस शर्मा ते सारा ही शर्मा परिवार हमेशा दी तरह 10 बजे पहुंच गए। हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता पिंड नथाना बठिंडा तो पहुंचे ने जी। और अगले मैसेज दे नाल इन्हां ने कीता ते डिलीट भी कर दिता, क्यों कीता बई, लेकिन नाम जड़े ने इन्हां दे मैनू दिस रहे ने जो भी इन्हां ने भेजे। पिंड वड़िंग खेड़ा तो भोला सिंह सिद्धू, भूरा सिंह गहलोत, राजा वड़िंग अते पिंड बजीतपुर भोमा तो बलजीत सिंह। ते जिहड़ा मैसेज डिलीट किया उत्थे तुसी की लिखिया सी जरूर दस

अनीता, रोहित, रितेश, प्रीतिशा, संधु ते मैक्स। हमेशा दी तरह बहुत बहुत शुक्रिया जी, और तुसी भी सानू शुक्रिया लिख रहे हो, पर एक प्रोग्राम ही तुहाडा जी। और अगला सुनेहा साडे कोल पहुंचिया दतरेंगी पाटापारा छत्तीसगढ़ तो, हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि ते नोखेलाल वर्मा ये भी पहुंचे ने। अगली फरमाइश शादरा दिल्ली तो, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, और चंडीगढ़ वालों नाल लेते बिना ये भी नहीं कभी पहुंचे जी, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु

अगली फरमाइश शादरा दिल्ली तो तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा और चंडीगढ़ वालों ना लेते बिना यह भी नहीं कभी पहुँचे जी। राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना नु भी नाल लेके आए ने और वड़िंगखेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस, पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा भी पहुँचे ने। अमरीक सिंह टेलर मास्टर जलान जिला संगरूर तो अपने साथी मैंबर भी लैके आए ने, मनप्रीत सिंह, बलजिंदर सिंह ते परमजीत पुरवा। और ऊपर कोट महला चो खुंटी बुलंदशहर तो मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी ते सारा ही अब्बासी परिवार पहुंच चुका है। गांव टाणी लाल खान, जावेद खान, अरमान खान, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खान, सोहिल खान, जुनेद खान, शुक्रिया। और अगले सुनेह दे नाल संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या ते सविता भाकरे पहुंचे ने जी शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र तो। थोड़ी सारियां दी रली मिली पसंद पूरी करन जा रही हूँ। सतविंदर बिट्टी दी आवाज़ और गीत दे बोल, लो फिर इन्ना कते तुहानू काम करना ही पैना, गीत सुनोगे ते आप ही पहचान लोगे।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रीक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर के

0: अधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वस्से विड़े।

0: क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अमर स्नेह,
1: थैंक
0: असीं ये
1: यू
0: कहांगे कि साडा दिल नहीं ओ भरदा, गाना सुनना तुहाडे कोलों इक होर जरूर
1: थैंक यू जी थैंक यू।
0: अड़ियो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मिठा गाने हो। मन ते मोया गया होना भुपिंदर सिंह जी जदों इन्हां दी आवाज़ सुनी होनी है।
2: हाँ जी हाँ जी, साड़ी एंगेजमेंट के बाद होर मैरिज के विच जिहड़े 4 महीने सगे, मैं बहुत गाने सुने।
0: अच्छा।
2: जद भी असी मिली दा सगे ये तो असी गाने ही सुनी दे सगे।
0: ते कदे सुनाया
2: और
0: भी तुसी?
2: नहीं, मैनू म्यूजिक दा बिल्कुल ना तो शौक है और ना ही गाना आउंदा
0: नहीं, पर हुण ते
2: है।
0: शौक पैदा हो गया होना जदों इन्नी सोहणी
2: हाँ
0: घरवाली होवे, इन्ना
2: जी,
0: सोहणा गांदी होवे।
2: नहीं इन्ना वड्डा कंपटीशन होए तो शौक कितने, फिर ये बस गाने ही सुने
0: अच्छा अच्छा
2: हैं।
0: अच्छा कभी अपनी
2: गाया नहीं।
0: पसंद भी इन्हां नूं दसी कि मैनूं
2: हाँ
0: इह
2: जी
0: गाना
2: हाँ
0: चंगा
2: जी हाँ
0: लगदा,
2: जी,
0: सुना दो।
2: ये कई अच्छे गाने हैं तो जिहड़े वो मैं कई बार जब पुछदी है तो फिर असीं दस देदा सी कि अच्छा ये वाला सुना
0: वैसे
2: दो।
0: तुहाडा फेवरेट सॉन्ग केड़ा?
2: एक तो इन्होंने वो यही सुनाता, दूजा एक पंजाबी का होर है फुलकारी, कढ़नी है फुलकारी
1: मेरे माही ने
2: मेरे माही
1: आना।
2: ने आना, वो भी
0: क्या
2: तो
0: बात
2: बहुत, ये दो
0: क्या
2: गाने मैनू
0: बात,
2: बहुत चंगे लगते।
0: वाह जी वाह। ये सिर्फ
2: बाकी
0: बाकी समय तो
2: बाकी
0: तुसी नाल ही रहे हो, इको बारी होया होना जदों जिथे फैमिली नाल नहीं सी
1: हाँ
0: जा
1: जी
0: सकदी,
1: हाँ जी
0: उदों ही सेवियां वाला गाना भी तुहाडी जुबान दे उत्ते बार बार आया होना कि
1: बिल्कुल
0: चंद
1: जी
0: माही मेरा दूर चला
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी,
0: गया। ते दूसरा फुलकारी वाला। अच्छा, फुलकारी पसंद है तुहानू?
1: बहुत बहुत पसंद है और मैं फुलकारियां पाइया भी बहुत है,
0: अच्छा,
1: अपने
0: कड्डी भी है
1: पूरे
0: कदी?
1: कड्ढण का मौका नहीं मिले।
0: जी
1: और सिखिया भी नहीं,
0: जी जी
1: तो बस पढ़ते रह गए और गाते रह गए।
0: अमर स्नेह जी, शादी तो बाद तुसी क्या कि मेरी जिथे जिथे इन्हां दी पोस्टिंग रही मैं नाल ही रही इन्हां दे। वैसे सौरा परिवार दे विच कौन कौन है?
1: मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हुन वो है नहीं, 4-5 साल पहले वो सानू छड़ के चले गए।
0: जी जी
1: 3 ब्रदर्स ने, बड़े जेठ ने, फिर ये आंदे ने, फिर एक छोटा ब्रदर है इन्हां दा।
0: अच्छा,
1: हाँ जी
0: भुपिंदर सिंह जी, परिवार दे विच किन्ने फुल ने, किन्ने जीओ तुसी?
2: हाँ जी, एक बेटा आया
0: अच्छा
2: तो 3 साल पहला उदा ब्याह हो गया सगा,
0: अच्छा
2: बस एक ही बेटा आया।
0: अच्छा बहुत अच्छी गल है। जॉब विच रहिंदे बंदा रुझ्या रहिंदा, ते जदों तुहाडे अगे रिटायर लग जांदा, कदी कदी तां इह रिटायर जिहड़ा हुंदा रिटायर ही हुंदा, ते कदी कदी इह रिटायर हो जांदा, दुबारा चक्का पै जांदा। तुसी रिटायर होए हो?
2: हाँ जी, नहीं रिटायर होने के बाद मैं कोई जॉब नहीं लिया,
0: अच्छा।
2: कर ही रहने, करते अपने काम है गया। मेरी जरा मदर इन लॉ है अवेलेबल, मतलब है गया, तो
0: जी
2: एक मदर है, दोनों

0: पसंदीदा रहा, ये बहुत फुलकारी वाला
1: हाँ जी
0: गाने
1: है
0: हुंदे
1: जी
0: सी।
1: है, कटनी है फुलकारी, मेरे माही ने आना
0: अच्छा
1: पंजाबी गाना काफी आउंदी सी, तो मैं भी काफी चाव नाल सुनदा हुंदा सका।
0: जी, हुण देखो जी दो गाने इन्हां ने अपनी चॉइस दे दस दित्ते ने, हुण तुसीं दस्सो केड़ी फरमाइश इन्हां दी पूरी करोगे।
1: मैनू लगदा एक पंजाबी मैं गा चुकी हाँ, तो थोड़ा जा हिंदी गुनगुना दिंदे
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, आंख मिली और दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, झुक गए चंचल नैना एक झलकी दिखला के, झुक

0: मुखड़ा
1: क्या बात है,
0: क्यों
1: वाह वाह, कौन ना मर जाए इस सादगी पे।
0: थैंक यू
1: बहुत
0: जी,
1: ही प्यारा गीत।
0: थैंक यू
1: भुपिंदर सिंह जी, बड़ियां और जगह दे उत्ते ड्यूटीज भी लगदियां होणगियां, बड़े मुश्किल हालात भी आए होणगे, और कुछ चीज़ां तुसी उदों इन्हां दे कोलों भी छुपा के रखदे होवोगे। सारा कुछ नहीं भी दस्या जांदा हुंदा कई वारी घर, जिहड़ियां सर्विस दौरान मुश्किलात आउंदियां ने। कदी होया सी इदां?
2: हाँ जी, सर्विस दियां गल्लां तां मैं घर घट ही दसदा सका, लेकिन उदां सारा दिन मतलब सर्विस नूं छड्ड के साडे च कोई मतलब छुपाण वाली कोई गल नहीं होई दी। सर्विस च जिहड़ी जो भी मेरा ऑफिस च डिस्कशन है, प्लानिंग है, जिन्ना भी कुछ भी हुंदा सी, ओह जल्दी मैं घर आके नहीं डिस्कस करदा
1: जी
2: सी, क्योंकि वो ऑफिस दा ही
1: जी
2: अलग रखी दा सी मैं ऑफिस लई।
1: गल कीती सी ना टेररिज्म दे दौर दी,
2: हाँ
1: ते
2: जी,
1: कहिंदे असीं उदों भी घूम के आए,
2: हाँ
1: ते
2: जी,
1: उत्थे तुहाडी कई वारी उहनां इलाकियां च ड्यूटी भी लगी जिन्हां नूं खतरनाक
2: हाँ जी,
1: क्या जांदा सीगा इलाकियां नूं।
2: हाँ जी, मैं दो पोस्टिंगा कीतियां, एक तो श्रीनगर सगी और उदे बाद अवंतीपुर है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट,
1: हाँ
2: वो
1: जी, हाँ
2: काफ़ी
1: जी
2: ज़्यादा मिलीटेंसी है उत्थे।
1: जी
2: लेकिन असी दो दो साल दे जिहड़े दो टेन्योर कीते, असी अपनी कार च बाहर श्रीनगर काफ़ी घूमे, बाहर इन्नी उदा मिलीटेंसी है जरूर हैगी है, लेकिन सानू कदी उदा उत्थे कोई मुश्किलात नहीं आई,
1: कभी आमना
2: कदी
1: सामना।
2: आमना सामने कदी नहीं होया। लोग बहुत चंगे ने उत्थे दे, लोकल जिहड़े कश्मीर दे जिन्ने भी लोग हैं बहुत अच्छे ने। असी डल लेक होई या गार्डनस होए, गुलमर्ग वगैरह जिथे भी गए,
1: जी
2: इदां दी कदी भी पिछले दोनों टेन्योर च कदी इदां दी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई मुश्किल
1: जी
2: नहीं आई।
1: जी जी आपां अमर सिंह जी तुहाडे कोलों पुछना चाहांगे, कदी मन च आया कि मैं भी जॉब कर लवां कि जां घर इंजॉय करना तुहानूं ज़्यादा चंगा लग्गिया सी?
0: नहीं बिल्कुल जी, मैं कीता भी विच जॉब, मेरा बेटा उदों 2.5 सालां दा सी शायद, तां मैं कोशिश कीती कि मैं एज अ लेक्चरर पठानकोट पोस्टेड सी हस्बैंड मेरे,
1: अच्छा।
0: मैं ट्राई कीता 3 महीने कीता, बट फिर मैं इहनां दी पोस्टिंग आ गई बॉम्बे, फिर डिसीजन लेना पिया कि इत्थे रहना या इन्हां दे नाल जाना। वो मेरे ख्याल सब तो वड्डा डिसीजन मैं लिता कि नहीं, फैमिली लाइफ नहीं अपसेट करनी है, वो बहुत वधिया डिसीजन लिता। एंड फिर मैं जिहड़े अपने स्टेशन्स दे अंदर केवी हुंदे सी या एफ स्कूल हुंदे सी, उत्थे मैं जॉब करना शुरू कीता, ते एक दो स्टेशन्स कीता, बट फिर मेरा बेटा वड्डा हो रहा सी, मैनूं लगदा सी कि उहनूं मेरी लोड़ है, फिर मैं छड्ड दित्ती जॉब, फिर मैं
1: जी
0: बिल्कुल घर दे विच ही अपने आप नूं रुझा लिया। हाँ जी
1: हुण गल होई सी कि फुलकारी गीत भी इहनां नूं बड़ा पसंद
0: हाँ जी
1: है ना,
0: हाँ जी
1: ते चलदे चलदे क्यों ना फिर फुलकारी हो जावे।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरे एक भाभी जी ने, मेरे ब्रदर ने, उन्होंने भी ये गाना बहुत पसंद है, तो मैं उन्होंने डेडिकेट करना चाहवांगी ये गाना। कढ़णीए फुलकारी मेरे माही ने आना,
1: ओए होए
0: नी मैं

0: क्या बात है वाकई जी। जिहड़े गीत तुसीं गुनगुनाए ना, दोनों पंजाबी गीत, बहुत घट सुने ने असीं ये गीत,
1: हाँ
0: और
1: जी,
0: ये इन्ने कॉमन भी नहीं, पर
1: हाँ जी,
0: बहुत ही प्यारे ते इन्हां बोलां दे विच बहुत मिठास है।
1: थैंक यू जी।
0: भुपिंदर सिंह जी, चलदे चलदे साडे सुनण वालियां नूं की कहना चाहोगे, खास तौर ते नवीं पीढ़ी नूं? अपनी मर्जी नाल शादी कराई, अज शादी हो गई, कदी माँ बाप नूं भी नहीं पुछिया, ते कल नौबत तलाक तक पहुंच गई।
2: हाँ जी, नहीं ये सब तो नहीं होना चाहिए। तो बच्चों बस यही कहना चाहते यंग जनरेशन नूं कि शादी बहुत वड्डा डिसीजन हुंदा आ, वो कोई जल्दीबाजी च ना लैन, सोच समझ के लैन, और एक बार डिसीजन ले लिया फिर पिछे मुड़ के नहीं कभी देखना चाहिए। फिर जो डिसीजन ले लिया है उन्होंने निभाना है
0: जी।
2: टिल द एंड। तो जो जवान बच्चे हैं उन्होंने यही कहना कि ये नहीं कि अज एक डिसीजन ले लिया फिर 2 साल बाद डिसीजन चेंज हो गया, तो अपने डिसीजन पर कायम रहो और मिलजुल के चलो। दोनों वालों सॉरी भी होनी चाहिए है, दोनों वालों यस भी होनी चाहिए है,
0: जी
2: एंड आर्गूमेंट्स भी होंगे, लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा सब कुछ होगा,
0: जी
2: लेकिन वही जिदा कहते हैं कि रात गई बात गई, अगला दिन अपना फ्रेश स्टार्ट करो
0: जी,
2: और अपनी जिंदगी अगे खुशी खुशी कटो।
0: रोसे गिले जिंदगी
2: हाँ
0: दा के
2: जी
0: हिस्सा ने, चलते रहने चाहिए ने।
1: बिल्कुल।
0: अमर सुनेह जी, हुण तुहाडे कोलों पुछना चाहांगे कि नौजवान पीढ़ी कई बारी माँ बाप नूं भी नहीं पुछदी, अपनी मर्जी नाल शादी कर लैंदी है, ते जिद्दां इन्हां ने कहा कि जे शादी कीती है तां निभाओ जरूर, ते कई बारी जदों माँ बाप नूं नहीं पुछदे ते फिर माँ बाप भी गुस्से च आके कहिंदे ने कि कड़ा तू सानूं पुछ के कीती सी,
1: हाँ जी,
0: की कहना चाहोगे इत्थे?
1: इत्थे मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों ने तो चलो जी थानू दस रहे ने कि असी चाहे विआह कर लिया या विआह तो पहला अगर दस्या नहीं, जिद्दां तुसी कह रहे हो दस्या नहीं विआह कर लिया, मैनू लगता है कि अगर बच्चे अजकल दी जिहड़ी जनरेशन है वो बहुत समझदार है, कई गल्लां पक्खों बच्चे बहुत मैच्योरली कई डिसीजन लैंदे ने, दोनों तरह दियां मैरिजेस साडे सामने आउंदियां, तो कुछ बच्चे ने वो बहुत जिद्दां हुण बच्चे जाके जे पढ़ लिख के अपना सैटल हो गए ने फिर वो डिसीजन लै रहे ने, तो कई बार उन्हों का डिसीजन भी मान लेना चाहिए पेरेंट्स नूं, क्योंकि उन्होंने नाल मिल के जे तुसी उन्होंने गाइड करते रहोगे तो वह किसी गलत पासे नहीं जाएंगे, जबकि तुसी उन्होंने बिल्कुल छड्ड ही दोगे फिर वो हो सकता है कुछ गलत डिसीजन आपे लैन लग जाए, बट उन्हों का साथ मापियां नूं नहीं छड्डना चाहिए, तो
0: जी
1: उन्होंने नाल उन्होंने जिंदगी का अगे राह दिखाना चाहिए,
0: जी
1: दसना चाहिए कि प्यार नाल मिलजुल के
0: देखो जी,
1: रहो।
0: शादी सारी जिंदगी का
1: बिल्कुल
0: एक
1: बिल्कुल
0: फैसला हुंदा,
1: बिल्कुल
0: इसलिए तुसी सोच समझ के लाओ,
1: हाँ
0: लड़का या लड़की दोनों पहला तो ये देखण कि असी एक दूजे दे विचारां मुताबक अपने आप नूं ढाल सकदे हां,
1: हाँ जी
0: ते जां असी आउण वालियां तंगियां दुश्वारियां नूं झेल सकदे हां,
1: बिल्कुल
0: पैरां ते खड़े हां चंगे तरीके नाल, ते की दोनों दा मेंटल लेवल आपस विच मिलदा है, एजुकेशन बराबर है, जे एजुकेशन भी नहीं बराबर तो की असी एक दूजे दे विचारां दे नाल तालमेल बिठा सकदे हां, इन्हां
1: बिल्कुल
0: गल्लां दा ख्याल जरूर होना
1: हाँ
0: चाहीदा।
1: जी, जो मैं कहना चाहती सी उन्हों तुसी बहुत ही चंगे तरीके नाल डिस्क्राइब कर दिता।
0: जी जी
1: हाँ
0: जी
1: जी
0: जी जी सो अमर स्नेह कौर जी ते ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड भुपिंदर सिंह जी, बहुत ही वधिया लग्गिया तुहाडे नाल गल्लां बातां करके, दुआ करदे हां तुसी इसे तरह हसदे खेडदे रहो, तुसी इसे तरह इन्हां नूं गीत सुणाउंदे रहो, और तुसी घूमदे फिरदे रहो और बुजुर्गां दी सांभ संभाल कर रहे हो, इस तों वड्डी होर की गल हो सकदी है जी। नौजवान पीढ़ी नूं एक बहुत वड्डा सुनेहा कि बुजुर्ग साडा सरमाया ने, उन्हां दी देख रेख करना उन्हां नूं संभालना साडा फर्ज़ है। मेहमान बरूहां ते प्रोग्राम च साडे अज दे मेहमान बनने लई तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी,
1: धन्यवाद जी,
2: बहुत
1: धन्यवाद
2: बहुत धन्यवाद
1: जी।
3: जी हुणे असीं सुन रहे सीगे मेहमान बरूहां दे तहत भुपिंदर सिंह जी ते अमर सिंह कौर होरां नूं, उन्हां ने बहुत ही वधिया तरीके दे नाल दस्या कि जिंदगी दे विच आपसी तालमेल और जिहड़ा भी फैसला लैणा है कदे वी ओह काहली च नहीं लैणा, थोड़ा ठहराव दो, एक दूसरे नाल सलाह करो, मशवरा करो, ते फिर ही किसे कंकलूजन ते पहुंचो।
4: बिल्कुल जी। जदों भी असी इस सिलसिले तहत इन्हां जोड़ियां दे नाल मुलाकात करवाउंदे हाँ तो इन्हां दे जो साथ दे इन्हां तजर्बियां तो बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा है, ते असी उस ना मुलाकातों तो सीख के अपने ज़िंदगी दे विच भी चंगा बदलाव लैके आ सकते हैं, क्योंकि कहिंदे ने कि दूसरियां दे तजर्बे तो सीख के इंसान ज़्यादा सीखता है।
3: जी बिल्कुल, ते जदों आपां संगीत दी गल करदे हां ते असीं उन्हां ने दो गीत भी छोटे छोटे सानूं सुनाए।
4: जी बिल्कुल जी। ते हुण इस खूबसूरत मुलाकात तो बाद असीं भी अपने स्रोतियां नूं गीत सुनाउण वाले हाँ, ते मिलदे हाँ जी फिर इस गीत तो बाद।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था।

फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जुस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फौजी वीरों, मेरे वालों यानी दीपाली वधवा वालों जय हिंद। तोरे मनोरंजन लई कुछ हिंदी फिल्मी नगमे चुन के ले आए हैं, उम्मीद करांगी तुहानू पसंद आनगे। लो सुनो प्रोग्राम दा पहला गीत, जीनियस फिल्म चो लिया गया, आवाज़ अरिजीत सिंह दी, गीतकार ने कुमार ते संगीतकार हिमेश रेशमिया।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया

फौजी वीरो प्रोग्राम चगला गीत जोधा अकबर फिल्म चुलिया गया, आवाज़ जावेद अली दी और इस गीत नु लिखिया जावेद अख्तर ने।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असदुल्ला। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में

प्रोग्राम दा गीत भारत फिल्म चो लिया गया। आवाज़ अभिजीत श्रीवास्तव दी, गीतकार ने इरशाद कामिल ते संगीतकार ने विशाल शेखर।

प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरा लई। फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत कहो ना प्यार है फिल्म चो लिया गया। आवाजा दितिया ने लक्की अली ते रम्या ने। गीतकार सावन कुमार ते संगीतकार ने राजेश रोशन।

0: आकार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही इस यात्रा के दौरान दोनों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री महासागर क्षेत्र में अवैध मछली स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष प्रधानमंत्री गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भारतीय मंत्री ने विशाल
0: प्रधान चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.zone.ir ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते लेकर मंत्री पटेल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल उपस्थित के समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून राजस्थान को शुरू कर क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि

0: कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत तक एक जनहित निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षा याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सुधार व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
3: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनॉग्रेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स है और सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड है, तो सभी बीएलओज को उनके इनॉग्रेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
2: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका

0: बाद ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य हुर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
1: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष अमीशा।
0: बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
2: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देव स्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा के उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सोना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव यौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन न्यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स, अते DTH दी आकाशवाणी

चलो इश्क विच नच भी लोगे ना तो तुहाडा 0.2 जो है पार घट ही जाएगा, ठीक है ना। लो जी हासा भी आ गया। तो लो जी कम टू द पॉइंट, ये कि तुहाडी चिट्ठियां पढ़ लैने हां ते बाद दियां गल्लां बाद च ही करांगी, यानी कि कोई टिप्स देना होएगा, चुटकला सुनाना होएगा, वो सारा कुछ बाद च ही कर दें।

डॉक्टर धर्मवीर ते जगसीर सिंह रायण तो डॉक्टर बनवारी जयपाल बिमला सोनू ममता मोक्ष दिशा सुशांत ते नाल इन्हां दे विक्रम जयपाल ते इन्हां सारे दी फरमाइश ते आपां सुना रहे जी काका दी आवाज़ विच गीत है तुसीं सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

किसी ने बहुत ही खूब लिखिया लिखिया है, जो तू लिखिया ओ कबूल होवे, जिथे तू रखे ओ मंजूर होवे, मेरा यकीन इन्ना मजबूत होवे, तेरे पाने विच सुकून होवे। वाह जी वाह। ते लो जी, लिखिया भी है सानू खत, किन्ने पढ़दे जी, खुरजा उत्तर प्रदेश तो, तिलक राज रोड़ा, प्रकाश चंदन ते अंकुश, गुरु गोबिंद सिंह नगर पूछो कैंचियां तो लिख रहे ने, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, कुलदीप, एकम, दमन ते अभिजोत, फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत ते मनविंदर सिंह पांडा।

मेयर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र तो अभिजीत, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई तो सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन, अका हाइट्स, बहादुरा नगर, नागपुर तो लिख रहे ने विशाली, शैलेश, सुमित ते ध्वनि। फरीदकोट तो लिख रहे ने सतनाम सिंह, गिल, गुरिंदर ते सारा परिवार। पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका तो सोहन सिंह बुक, निशान, सीरत ते सारा परिवार। मॉडल टाउन करनाल तो सुधीर नूतन, मीनाक्षी तिवारी, सुनीता जैन, संदीप गुगलानी, सुनीता शर्मा, हरिपाल, इशप्रीत शर्मा, बिपाशा ते सारा परिवार। मुक्तसर तो लिख रहे ने बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत, निशु ते भूपिंदर ते ये सुनना चाहते ने कोई भी गीत ते सुना रहे हैं। प्रेम हरदीप की आवाज़ में गीत है, बहुत ही प्यारा जहा गीत है, सुनते हैं। तुसी सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

सुन रहे जी प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां डीटीएस दी पंजाबी प्रसारण सेवा ते पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो लिख रहे ने हरजिंदर चिंदा जसवीर रेखा गगन सोनी सीता ते गीता कोई भी गीत सुनना चाहते ने बग्गा पुराणा तो सतनाम सिंह अमरजीत कौर पोतरी जसगुण पोतरा तेग फतेह सिंह ते सारा परिवार राजस्थान तो लिख रहे ने ब्रजलाल चौहान ते नीरज कुमार चौहान बक्सर बिहार तो शरफुद्दीन अंसारी ते इना दे नाल फातमा खातून अंसारी डुमराम बिहार तो डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी डॉक्टर सोनम अदीबा ते दानिश अंसारी सारेमपुर बक्सर तो ही राज एस डी अंसारी ते आसमा खातून अंसारी जेल रोड दिल्ली तो लाल बाबू दीवाना ते दिव्या भारती पेन कैरिका सिरसा तो लिख रहे ने इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर सरकुन ਅਤੇ ਹਨੀ ਲੋਟ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ

3 जुलाई तो शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा लई सारियां तैयारियां मुकम्मल। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ऐलान किया कि कादियां हलके नूं सब डिवीजन वजों अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब सरकार ने टेक्निकल ग्रेड यूरिया की थां सबसिडी वाले एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया की सप्लाई के मामले में 7 अधिकारियों को चार्जशीट जारी की है, जबकि एक होर अधिकारी का तबादला किया गया है। चोन कमीशन दी हदायतों अनुसार चल रही वोटर सूचियां दी विशेष तीबर सोध SIR तहत जलंधर जिले विच बूथ लैवल अफसरां वल्लों घर घर सर्वेखण कीता जा रहा है। गुरदासपुर विच रावी दरिया विच अचानक पिछों पानी छड्डे जाण करके बीते कल मकौड़ा पत्तण विखे पलूटन पुल दा अद्धा हिस्सा तेज पानी दे वहाव च रुड़ गया। लोकां नूं भारी मुश्किलां दा सामना करना पै रहा है। ये सन अज दियां हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, DRM 864 किलो हर्ट्स, FM 100.8 मेगा हर्ट्स, FM 100.9 मेगा हर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए ते नाल दे नाल वेव्स ऐप दे जरिए तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते हो। इस वेले स्टूडियो दी घड़ी मुताबक 4:04 होण जा रहे ने। पेश है सदा बहार गीत।

प्रोग्राम चल रहा जी सदा बहार की। हुणे तुसी चौदवी का चांद फिल्म चो लिया गया गीत सुन रहे सी। आवाज़ सी मुहम्मद रफी दी।

ये समा भी आज कुछ खास लगता है, हर लम्हा तेरे होने का एहसास लगता है। चांदनी भी आज मुस्कुरा रही है, जैसे हर मौसम तेरा इंतजार करता है।

प्रोग्राम सदाबहार गीत आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम च अगला नगमा आराधना फिल्म चो लिया गया। आवाजा दितियां ने किशोर कुमार ते लता मंगेशकर ने, गीतकार आनंद बख्शी ते संगीतकार सचिन देव बर्मन।

कुछ रिश्ते लिखे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। मेरा दिल भी एक कोरा कागज़ था, जिस पर तुम्हारी मोहब्बत ने उम्र भर मिट ना सकने वाली दास्तान लिख दी।

प्रोग्राम सदाबहार गीत दा अगला नगमा सागर फिल्म चलिया, आवाज किशोर कुमार थी, गीतकार जावेद अख्तर ते संगीतकार राहुल देव बर्मन।

तेरे चेहरे का नूर चांद से कम नहीं, तेरी हंसी से बढ़कर कोई सनम नहीं। लोग चांद की तारीफ करते रह गए, हमें तो तेरे चेहरे के सिवा कुछ दिखा ही नहीं। प्रोग्राम दा अगला गीत अनंत फिल्म चुलिया, आवाज मुकेश दी, गीतकार ने युकेश ते संगीतकार सलिल चौधरी।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, तेरी यादों का चांद निकल आए, हर खामोशी तेरा नाम पुकारे और दिल बस तेरा ही इंतज़ार निभाए। प्रोग्राम सदाबहार गीत, इस प्रोग्राम दा आखिरी नगमा यादों की बारात फिल्म चो लिया गया। आवाज़ा मोहम्मद रफ़ी ते आशा भोसले दियाँ।

इस गीत ने लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने। इस गीत दे नाल मैनू यानी दीपाली नू प्रोग्राम खत्म करन दी दे दियो इजाजत। छेती मिलांगे इस वादे दे नाल। अपना ते अपने दा ख्याल रखो।

करवत पला न करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। हौ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मुख काहे को मारे। ए बिरहो पिजे बोल भगत कबीर जी द्वारा उचारित ने। भगत कबीर जी दी बाणी उपदेशात्मक है, आप जी ने प्रभु नू मन अर्पित करके प्राप्त कीता सी। आप जी अनुसार अकाल पुरख प्रभु नू मिलन दे लई हिरदे विच्चों विकारां रूपी कावां नू उड़ाउणा पैंदा है। आप जी समाज विच पुरातन प्रचलित एक प्रथा नू प्रतीक बना के उस अकाल पुरख प्रभु नू सद्दा दिंदे ने कि हे विकार रूपी कागा, उड़ जाओ, क्योंकि मेरे हिरदे घर विच प्रभु ने आना है। उड़ो ना कागा कारे, बेग मिली जाए अपने राम प्यारे। सरवण करदे हां भाई अनूप सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

उड़ो ना कागा कारे, बेग मिली जाए अपने राम प्यारे। इस शब्द अगायन कीता सी पाई अनूप सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। भगत कबीर जी निम्रता दे घर विच आके अपने आप नू अपराधी बयान करदे ने। दरअसल मनुखी बिरती है ही ऐसी, जिस प्रभु ने ए जिंद ए जान ए शरीर दिता है उस नाल तां प्रेम कीता ही नहीं, उदी भक्ति उदी साधना कीती ही नहीं। गोबिंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी पाओ भगत नहीं साधी। सरवण करदे आं पाई सरबजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया।

0: गोविंद, हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी पाओ पगत नहीं साधी। इस शब्द गायन की तासी पाई सरबजीत सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जगसीर सिंह।
1: राम कली बाणी भगतां की, कबीर जियो एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, कवन काज सिरजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया, भवनिध तरन तारन चिंतामन, एक निमख ना एह मन लाया, गोबिंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिस की पाओ भगत नहीं साधी, रहाओ पर तन पर तन पर ती निंदा, पर अपवाद ना छूटै, आवा गवन होत है फुन फुन, एह प्रसंग ना टूटै, जिह घर कथा होत हर संतन, एक निमख न कीनो मैं फेरा, लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा, काम क्रोध माया मद मत्सर, ए संपै मो माही, दया धर्म अर गुर की सेवा, ए सुपनंतर नाही, दीन दयाल कृपाल दमोदर, भगत बछल पै हारी, कहत कबीर पीर जन रख हो, हर सेवा करो तुम्हारी। एह पावन शब्द भगत कबीर साहब जी का राग रामकली विच उचारण कीता होया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन अंग 971 ते सुभायमान है। इस शब्द विच मनुखी मन की तस्वीर खिंची गई है कि जीवन मनोरथ वलों बेपरवाही, आकृत घनता, आलस ते मैले फुरने हो चुकी आत्मक मौत दे संकेत हन। प्रेमा भगती दी अनहोंद ते विकारां दी संगत कारण गुरु दी सेवा अते दया जो दैवी गुण हन साडे अंदर प्रफुल्लित ही नहीं हुंदे। जीवन दी कामयाबी लई प्रभु अगे अरदास, उद्दम ते उत्साह वड्डे साधन हन। इस शब्द दे रचनहारे भगत कबीर जी मध्यकाल दी भगती लहर दे बड़े प्रसिद्ध प्रतिभाशाली समाज सुधारक, रब्बी पुरख, निर्गुणवादी भगत सन। उन्हां दा जन्म बनारस दी धरती ते होया। एक दिन सवेरे वड्डे तड़के कबीर साहब जी उस रस्ते च लेट गए जिथों रोज़ भगत रामानंद जी महाराज गंगा इशनान लई जांदे सन। हनेरे विच रामानंद जी दे पैर जदों कबीर साहब जी दे शरीर नाल छोहे तां रामानंद जी ने सहज पा ए बोल कहे, उठ राम के राम कहो। बस इस दिन तो कबीर साहब जी रामानंद जी दे चेले बन गए, राम नाम दी भगती विच लीन रहन लग पए। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच आप जी दी बाणी 17 रागां विच दर्ज है। 225 शब्द, 243 श्लोक, 3 अष्टपदियां अते 33 7 वार 52 अखरी विशेष बाणियां दर्ज हन। आप जी दी बाणी दा संग्रह कबीर बीजक ग्रंथ भी प्रसिद्ध है। कबीर साहब जी दा उपदेश है कि अल्लाह अते राम दोवें

प्रीत स्थापित करके मोक्ष प्राप्त कर गए। ऐसी धरती ते जो के सरापी हुई सी, हर का संत मरे हड़म्बे ता सगली सैन तराई। भगत कबीर जी प्रभु दे नाम दा वणज करन दा सुनेहा दिंदे सन। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। सरवण करदे आं भाई बहादुर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़या निर्मोलक छूट गई संसारी। इस शब्द गायन कीता सी भाई बहादुर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।

0: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: समारोह में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्य को भी मान्यता देते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन, रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और

0: सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: बारिश की मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, एआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़ से डीटीएचडी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ये जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस टाइम साढ़े स्टूडियो की कड़ी ते 6:05 हो रहे हैं। तो हुण पेश है अज्ज दे प्रसारित होने वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां।

लड़ीवार रेडियो नाटक होया देस पराया दी 12वीं कड़ी च तुसी सुन चुके हो कि कैनेडा च परमीत कौर ते उस दे पति आर्यन ने ईशप्रीत नूं घरों कढ दित्ता है ते ओ चौधरी ते लखे बाई नाल एक फार्म दे कैबिन च रहण लग पैंदा है। चिंदे ते दिलराज कौर नूं कैनेडा मुड़न ते ही ईशप्रीत दे चले जाण दा पता लगता है। हुण सुनो इस लड़ीवार रेडियो नाटक की 13वीं यानी आखिरी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दीआं खास खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज राष्ट्रपति भवन विखे साल के दूजे रक्षा सन्मान समारोह च बहादरी पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशेल्स का दौरा काफ़ी सार्थक रहा है, इस नाल भारत सेशेल्स की दोस्ती मजबूत होगी। हरियाणा ते राजस्थान सरकार ने अज नवी दिल्ली च यमुना जल प्रोजेक्ट बारे एक समझौते ते हस्ताखर किए। श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़कच ने पंजाब सरकार नूं श्री अकाल तख्त साहब वालों बेअदबी विरोधी कानून संबंधी उठाए गए सारे एतराज़ों का एक महीने के अंदर हल करन दे दिते निर्देश। मौसम विभाग वालों अज ते कल पंजाब च कुछ थावां ते हल्की तो दरमियानी बारिश की संभावना, जबकि 1 जुलाई तो पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ च भारी बारिश ते तापमान च गिरावट बारे अलर्ट जारी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉस एंजलस 2028 ओलंपिक खेडां लई कीता क्वालीफाई। ते हुण खबरां विस्थार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज राष्ट्रपति भवन विखे दूजे रक्षा सन्मान समारोह च बहादरी पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लैफ्टीनेंट जनरल नीरज वरसने, लैफ्टीनेंट जनरल विकास रोहेला, लैफ्टीनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंदरा ते लैफ्टीनेंट जनरल मोहिंदरपाल सिंह नूं अत विशिष्ट सेवा मैडल नाल नवासिया गया। इस मौके उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, होर केंद्रीय मंत्री अते हथियारबंद सेनावां दे सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। ये पुरस्कार हथियारबंद सेनावां, केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलों ते होर सुरक्षा एजेंसियां दे कर्मचारियों वालों बेमिसाल बहादरी दे काम नूं मानता देण लई दित्ते जांदे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशेल्स का दौरा काफ़ी सार्थक रहा है, तो इस नाल भारत सेशेल्स की दोस्ती मजबूत होगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 50 साल तो दोवां मुल्कां दरमियान संबंध डूंगे विश्वास की सांझी प्रगति पर आधारित रहे हैं। अगले 50 साल में इस संबंध नवीनता, स्थिरता ते सांझी खुशहाली नाल प्रभाषित होणगे। उन्होंने सेशेल्स की आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर राष्ट्र दिवस समारोह च हिस्सा लैन पर भी अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमायनी, सरकार अते सेशेल्स के लोगों का शुक्रिया अदा भी किया। हरियाणा ते राजस्थान सरकार ने अज नवी दिल्ली च गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यमुना जल प्रोजेक्ट के निर्माण से लागू करने लई एक समझौते ते दस्तखत किए ने। इस मौके गृहमंत्री ने कहा कि इस समझौते ने हरियाणा ते राजस्थान के लोगों की करीब 3 दहाकों तो चली आ रही पानी की समस्या का हल कर दिता है। उन्होंने कहा, यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों दिए गए संवाद राही हल के मंत्र की एक शानदार मिसाल है। उन्होंने कहा, इस समझौते तहत जुलाई तो अक्तूबर तक यमुना नहर तो राजस्थान 3 भूमिगत पाइपलाइन राही करीब 58 करोड़ घन मीटर पानी सप्लाई किया जाएगा। इन्हों पाइपलाइन राही दोवें राज्यों को पीने वाला पानी उपलब्ध होगा। इस दौरान जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा,
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: इस मौके राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ते केंद्र सरकार ते राज सरकारां दे सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज नवी दिल्ली च रक्षा खोज ते विकास संगठन DRDO नूं विधि शक्तियां बारे डेलीगेशन ऑफ पावर DFP 2026 जारी किया। यह रणनीति खोज ते विकास प्रोजैक्टां दी कुशलता, जवाबदेही ते समय सिर लागू करन वाल एक महत्वपूर्ण सुधार है। इस मौके राजनाथ सिंह ने कहा कि DFP 2026 खोज ते विकास इकोसिस्टम तो उभर रही प्रणालियां, मंच अते तकनोलॉजियां दे तेजी नाल उत्पादन ते रक्षा बलों च इन्हां नूं शामिल करन दी सहूलत देवेगा। हवाई फौज के मुखी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने अज नवी दिल्ली च इटली के हवाई फौज के मुखी लैफ्टीनेंट जनरल एंटोनियो कंजरवा नाल मुलाकात की। भारतीय हवाई फौज ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा,

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, आराम 854 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो दी कड़ी ते 7:40 हो रहे हैं। लो हुण पेश है प्रोग्राम विविधता। हिंदी वार्ता प्रोग्राम विविधता दे विच जीवन चलने का नाम दा पहला प्रसारण जिस विच वार्ताकार होणगे डॉक्टर रेखा कालिया भारद्वाज।
1: जिंदगी नुमा चीज भी कुछ ऐसी है जिसे हर पात्र अपने ही ढंग से पढ़ता है, सिर्फ पढ़ता ही नहीं समझता भी है। बहुतों के लिए यह एक भंवर है, बहुतों के लिए यह एक भंवर है जिसमें से निकलने की कोशिश मात्र से ही पात्र गहराई में डूब जाता है। अनेकों के लिए इसके पात्र नाटककार मार्लो के डॉक्टर फाउस्टस हैं, जो सब कुछ प्राप्त कर बिक जाते हैं एक शैतान के हाथ। कईयों ने माना है यह है सिर्फ एक बदरंग सी पेंटिंग जिसमें सुंदर रंगों की जगह छिटके हैं जगह जगह पर काले धब्बे। बहुत कम पात्र शायद यह समझे हैं कि जिंदगी नुमा चीज की सार्थकता छिपी है गीता सार में, कर्मणे एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन भव। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। जिंदगी तो बस चलने का नाम है, सांसों का चलना और निरंतर चलते रहना। जहां पर सांसें थमी वहीं पर जिंदगी रुक जाती है। सांसों के चलने और रुकने तक का सफर जिसे जिंदगी कहा जाता है, उसके फलसफे को वैज्ञानिकों ने, ध्यानियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने और कवियों ने अपने अपने विचारानुसार अभिव्यक्त किया है। इसी जिंदगी पर ढेरों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और असंख्य और भी लिखी जाएंगी। अपनी स्वरचित कविता में मैंने भी जिंदगी के कुछ पहलुओं को टिटोला है। सर्वप्रथम तो हमें समझना है कि जिंदगी का सफर तो सिर्फ जीवन और मरण का है। उस मध्य में हमारे सोच, हमारे कर्म, हमारे अनुभव, हमारा आचार विचार व्यवहार हमारे व्यक्तित्व की पहचान कराते हैं कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। और हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए कितने उपयोगी हैं। दूसरा विचारणीय विषय है कि जिंदगी को किस तरीके से संजीदगी और रवानगी से के साथ जिया जाए, किन किन तरीकों से, माध्यमों से हम अपने आप को तल्लीन रखें। सिर्फ तल्लीन ही नहीं, सकारात्मक ढंग से हम व्यस्त रहें। जिंदगी का असली पहलू उसके काल है, बाल्यकाल, युवाकाल, प्रौढ़काल और इनके साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ उनका सेवानिवृत्ति काल भी जुड़ा हुआ है। बाल्यकाल को छोड़कर, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे आश्रित होते हैं, यद्यपि संस्कारों की नींव इसी समय ही डाली जाती है, व्यक्ति की समग्र शिक्षा ही उसका सर्वांगीण विकास है। इस विकास के साथ जब जीवन यात्रा होगी तो निश्चित रूप से ये यात्रा रोचक, प्रेरणादायी एवं उत्साहित होती है। समग्र शिक्षा से अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास के लिए कितना यत्नशील है। जितना वो यत्नशील होगा उतनी ही जीवन रूपी यात्रा सहज हो जाती है। सबसे पहले अच्छे स्वास्थ्य के प्रति सजग होना बहुत जरूरी है। दूसरा, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना। मानसिक अस्वस्थता से अभिप्राय नकारात्मक सोच से है। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति अपने संदेही स्वभाव, तुलनात्मक रवैया, अहमवादिता एवं गलत फहमी की वजह से माहौल को खराब करते हैं और शिकायतों के पिटारे लिए घूमते हैं। हाँ, कि जीवन भी क्या है, समाज तो खत्म हो रहा है, आजकल के बच्चे कहना नहीं मानते, उनसे तो भगवान बचाए, बहू ऐसी है, बेटी ऐसी है, किराएदार ये है, ऐसी ऐसी सोच से जीवन रूपी नौका की सेलिंग, जल यात्रा सहज नहीं होती, अपितु हिचकोले खाती खाती किनारे पर जा लगती है। कभी कभी तो अपनी उलझनों, परेशानी

तनाव एवं दिशाहीनता के कारण व्यक्ति नौका से कूदकर बीच में ही छलांग लगा देता है। आज हमारे समाज में बच्चे स्ट्रेस के कारण, युवक दाम्पत्य जीवन की कड़वाहट के कारण, नौकरी पेशा लोग नौकरी में असंतोष के कारण जीवन में लंगड़ाकर चलते हैं, क्योंकि उन सब में नैतिक शिक्षा का अभाव है। समग्र शिक्षा सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, अपितु उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो ज्यादा पढ़े लिखे ना भी हो, परंतु एक अनौपचारिक शिक्षा जिसे इनफॉर्मल एजु कहा जाता है उसमें साक्षर होते हैं, और समाज ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। वे जीवन को बेहतर तरीके से जीते हैं, चलाते हैं, उदाहरण पेश करते हैं। उदाहरणतः एक माँ जो सकुशल गृहिणी है, परिवार में अपने सास ससुर और दूसरे रिश्तेदारों से बड़ी ही अच्छी तरह से रिश्ते निभाती है, बच्चों को समय देती है, जिसका हर एक कर्म शिक्षा का एक बिंदु होता है, तो ऐसी महिलाएं, ऐसे व्यक्ति जीवन में सही तरीके से चलते हैं और दुख तकलीफों से जो उनके जीवन का हिस्सा है उनको अपने पे हावी नहीं होने देते और उनसे कभी भी घबराते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति संयम, धैर्यशीलता एवं आत्मविश्वास के साथ साथ अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। सांसारिक कर्तव्यों के साथ साथ वे नैतिक मूल्यों के प्रति भी संजीदा हैं, क्योंकि जीवन तो चलने का नाम है। चौगिर्दे में सकारात्मकता की खुशबू ही जिंदगी को सुचारू रूप से चलाती है, अन्यथा पंगु सोच के साथ साथ हम जीवन में चलते नहीं अपितु रेंगते हैं। समाज आज असंख्य ऐसे व्यक्तियों से भरा पड़ा है जो शारीरिक अस्वस्थता एवं मानसिक बीमारी के कारण जिंदगी को एक बोझ समझकर ढो रहे हैं। उनकी जिंदगी चलने का नाम नहीं बल्कि रोने का नाम है, जिन्हें कहीं भी आशा की किरण नहीं नजर आती, क्योंकि आंखों पर तो नकारात्मकता की पट्टी चढ़ी हुई है। मैं सभी श्रोताओं से यह अपेक्षा करती हूं कि उन्हें यह समझना होगा कि मनुष्य जीवन प्रभु की असीम कृपा का एक तोहफा है, जिसे कर्मठ होकर ही जिया जाना चाहिए। चाहे आप नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, घरेलू महिलाएं हो, सेवानिवृत्त बुजुर्ग हो अथवा और कोई भी, जीवन तो चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, लेकिन हमारे कर्म संस्कारशील गुणों से जुड़े होने चाहिए। आज हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने संस्कारों को भूलकर जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर आपाधापी है, ठहराव नहीं, पैसा है सुकून नहीं, रिश्तेदारी है अपनापन नहीं, बच्चे हैं पर लगाव नहीं, क्योंकि हमने स्वयं को नैतिक शिक्षा से दूर रखा है। अगर जीवन चलने का नाम है तो कर्म उसे गति देते हैं। कर्मों की गति को संयमित करने के लिए संस्कारशील गुणों का होना जरूरी है, जैसा कि सेवा, विनम्रता, धैर्य, कर्तव्य निष्ठा, कृतज्ञता, आत्मविश्लेषण, आशावादी नजरिया, परोपकारी भाव और नित्य जीवन शैली में इन गुणों का सही उपयोग। आपको जीवन यात्रा रूपी रथ के खुद ही सारथी बनना है। स्वामी विवेकानंद जी ने यह सही कहा है, तुम्हें अपनी सोच और कर्मों से अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी जिंदगी की दिशा और दशा को तय करते हैं, क्योंकि कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान, कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। हमें अगर ये समझ आ जाए कि जिंदगी तो चलने का नाम है, जीवन तो चलने का नाम है, तो क्यों ना कुछ बातों को ध्यान में रखें ताकि सही तरीके से जीवन यापन कर पाए। हमें ध्यान रखना है कि हमारी सोच सकारात्मक हो, विपरीत परिस्थितियों में नए अवसर खोजें, आत्मविश्वास को कभी भी कम ना होने दें, तुलनात्मक रवैये से बचें, जिंदगी में लचीलापन लाएं, जटिल आडंबर युक्त व्यवहार से मुक्त हों एवं आध्यात्मिक विकास के लिए जतनशील रहें। सृजनशीलता ही जिंदा दिली का नाम है।
ये सही कहा गया।

0: जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करो, अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो, मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो और ना ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने, पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में कभी किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितनी दूर है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, हमें सकारात्मक बनने के लिए प्रेरित करती है, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक करो और सकारात्मक बनो, यही जिंदगी का सही मकसद है, ताकि हम गर्व से कह पाए कि जिंदगी चलने का नाम, जिंदगी चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम।
1: हुणी तुसी सुन रहे सी विविधा च हिंदी वार्ता, जीवन चलने का नाम है। ते वार्ताकार सन डॉक्टर रेखा कालिया भारद्वाज। आओ हुण सुनदे हां, समात फरमाउने हां चंद गजलां।

जी हाँ, जिंदगी हसीन है प्रोग्राम दे विच फिर तो तुहाडा स्वागत है। और जिंदगी हसीन है प्रोग्राम दे विच हुण गल करदे हां मुस्कुराउण दी, क्योंकि साडा जिहड़ा अखीरला विशा सीगा उह सीगा खुशी दे उत्ते। हुण गल करदे हां मुस्कुराउण दी। दोस्तों, की तुसीं कदे सोचिआ है कि असीं दिन विच किन्नी कु वार शिकायत करदे हां, पर जे असीं हर दिन तीन चीज़ां लई धन्नवाद करना शुरू कर दईए तां साडी सोच बदलन लगती है। शुकराना सिर्फ शब्द नहीं है, यह जीवन जीवन का तरीका है। चलो एक छोटी जी कहानी थोड़े नाल सांझी करते हैं। एक बजुर्ग हर सवेर अपने घर के बाहर बैठ के सूरज नूं वेखता सी। किसी ने पूछा, बाबा जी तुसी हर रोज़ की सोचते हो? वो मुस्कुरा के बोले, अज भी रब ने मैनू एक होर दिन दिता है, इस तो वड्डा तोहफा मेरे लिए की हो सकता है? सोचो एड्डी वड्डी गल। शुकराना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जे असी मुस्कुरा के सारिया चीज़ां नू एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए तो सोचो कितना कमाल हो जाएगा, जिंदगी ही कमाल हो जाएगी। जी हाँ, गल्लां बातें बहुत ने करन वालियां, और समा भी साढ़े को लिमिटेड है। आनंद माणदे हैं जी अगले गीत दा जी।

जी हाँ, प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा लुत्फ तुसीं पूरा लै रहे हो, मैनू पता है, क्योंकि जे मैं लै रहा तुसीं भी लै रहे होवोगे, क्योंकि तुहाडियां वाइब्स मेरे तक पहुँचदियां ने। चलो अज तो कोई ना कोई बदलाव देखते हैं अपनी जिंदगी दे विच। अज तो पांच छोटे वादे अपने नाल करते हैं। पहला वादा, हर रोज़ घट्टो घट एक बार दिलो जरूर हसोगे। पहला वादा तुसी मेरे नाल, मेरे तो पहला तुसी अपने नाल करो कि हर रोज़ घट्टो घट एक बार दिलो हसना है। कोई भी एक छोटा जिहा पल याद करना है, उहदे उत्ते उहनू महसूस करना है, पहला महसूस करके उहनू फील करके हसना है, हासा आएगा, खुश होना है। दूजा वादा, अपने परिवार नाल कुछ समा जरूर बिताउणा, भावें छोटी जी गल करो, कोई गलबात हो रही है उहदे विच अपनी राय जरूर दिओ। तीसरा वादा, मोबाइल तो वध लोकां नाल गल करोगे।

0: जी हाँ, प्रोग्राम जिंदगी हसीन है चल रहा है। हुण वेला फिर तो हो गया है छोटे जे ब्रेक दा, फिर मुड़ तो हाजिर होने हैं थोड़ी देर बाद।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम जिंदगी हसीन है चल रहा है। और तुसी एक गल कई बारी समझी होनी है, महसूस कीता होना कि कई बार असी जो भी पाना रब दा वरत रहा हुंदा है, सानू नहीं समझ आती कि चल की रहा हुंदा है। असी उन्हों हुक्म नहीं समझते बल्कि अपने दिमाग लान लग पैंदे आ, निराश हो जाने आ। सो मैनू लगता है कि सानू इदां दियां घड़ियां दे विच अपना जिहड़ा विश्वास है, अपना जिहड़ा मन जिहड़ा डोलदा है, उदों रब उत्ते सिट देनियां चाहीदियां डोरियां, क्योंकि उहदा हुक्म मनना सब तो वड्डी किरपा दा एक रूप है। सो उहदे हुक्म नूं मनण वास्ते अपने आप नूं जिहड़ा सरेंडर करना बहुत जरूरी है, रब दे हवाले छड्डना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी तुहाडे नाल हो रहा है वह चंगा ही हो रहा है, ये मनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो फिर देखना तुहाडी जिंदगी हसीन है, तुसीं महसूस जरूर करोगे। जिंदगी हसीन है प्रोग्राम दे विच असीं गल्लां बातें बहुत कीतियां और करदे भी रहांगे, क्योंकि साडे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, पर जिन्ना भी टाइम है असीं बहुत वधिया वधिया प्यारियां प्यारियां ही गल्लां करांगे, जितना साडी जिंदगी होर हसीन हो जाए। लो जी, जिंदगी हसीन है प्रोग्राम का अगला गीत तुहाडे सामने पेश है, आनंद माणो जी इस गीत का।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण

0: विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक 30 परम विशिष्ट सेवा पदक 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार निवेश औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन ऊर्जा डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।

0: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
1: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से 0 उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2 पहिया, तिपहिया, 4 पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है।

0: समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange

0: अदालत ने सही करार दिंदिया कैद वे जुर्माना भी लगाया। बई असी तो बड़ी हलीमी नाल उनू समझाउन दी बहुत कोशिश की थी। पर ओहो खैर छड़ो, जो होना सी वो हो गया।
1: बई ये तो तय है, जो बीजना वो वड़ना ही पैना।

0: अणथक जतन करनगे ते ओ पिंड देश विच स्वर्ग तो घट नहीं होवेगा।
1: भरा मेरे मार्गदर्शक तो तुसी हो राज भाई, सच्ची तुसी मेरी जिंदगी बदल दिती है। तुहाडे वर्गे उसारू सोच वाले यूथ क्लबां दी भारत दे सब पिंडां नूं जरूरत है। चिट्टा सचमुच साडी जिंदगी नूं चिट्टा कर देंदा है। ये जिस नूं लग जावे जेकर मौका ना संभालिया ते अंत जल्दी ते निश्चित है।
0: बिल्कुल सही आख्या गुरदीप भरा, तू इस चिट्टे ने तां बेड़ा गर्क कर दिता साडे पंजाब दा, बेड़ा गर्क कर दिता भारत दी जवानी दा, बेड़ा गर्क करके रख दिता इस चिट्टे ने।

मैं ता तेनू लेने आ गया, तू लग बैठी खुंजे नी, कल्ले भौड़दा चित नहीं लगदा, कल्ले भौड़दा चित नहीं लगदा, सुन्नी हवेली गूंजे नी, केड़ा मेरे भांडे मांजे, नी केड़ा मेरे भांडे मांजे, कौन अंगन नूं हुंजे नी लैके जाऊंगा।

0: मेले पंजाब दी रूह ने ते मेलियां दी रूह ए मलवई गिद्दा। मालवे दे मशहूर मेलियां विच जगरावां दा मेला, छपार, जर्ग ते तख्तपुरे दे मेलियां दा आपो अपना इतिहास है, जिथे इना मेलियां च मदारियां दे करतब, पहलवाना दे कोल ते कविशर अपनी कला दा प्रदर्शन करदे ने, उत्थे मलवई गिद्दा इना मेलियां विच खिच दा केंद्र हुंदा है। जदों गिद्दे च खड़ा कोई गबरू उच्ची हेक ला के बोली पाउंदा है तां लोकां दी भीड़ मल्लो मल्ली गिद्दे दे पिड़ वल नूं हो तुरदी है, ते जदों इन्हां गिद्दियां दे विच मुकाबलेबाजी हुंदी है तां दिन ते रात अपना सफर भुल जांदे ने, जाणो सब कुछ खलो जांदा है। मुकाबलेबाजी बारे कुछ गल्लां ने सुखविंदर सिंह खेड़ी होणा दी जुबानी।
1: गिद्दे दा जदों मुकाबला शुरू हुंदा है उदों तां वैसे ਗਿੱਧਿਆਂ 'ਤੇ

わ。दोस्तों, समा पावें बदलता रहे, पर चंगा संगीत कदे पुराना नहीं हुंदा। गजलां दी खूबसूरती भी यही जी है कि हर पीढ़ी इन्हां विच अपने आप एहसास भरे जांदे ने। और वड्डी गल ये है कि हर पीढ़ी अपने आप इनू महसूस कर लेंदी है। किन्नी अनमोल जज्बातां नाल भरी हुई गजल। अक्सर कहा जाता है कि संगीत दिलां दी भाषा हुंदी है, अते गजल उस भाषा का सब तो नरम अंदाज। लो हुण पेश है इस प्रोग्राम की अगली गजल।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया।

0: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of our armed forces, were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudha Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudha Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudha Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudha Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. Our correspondent has more on Prime Minister's visit.
3: Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of Indian diaspora there. He also paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park. In a social media post, Prime Minister Modi expressed happiness on attending the National Day celebrations that marks 50 years of independence of Seychelles. He also thanked the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermine, the government and people of Seychelles for their affection. During the visit, Prime Minister Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. During

0: बहुत ही प्यारा गीत सतविंदर बिट्टी की आवाज़ ने सुनिया और उम्मीद करते हैं तुम सब ने इस गीत का आनंद माने होएगा जी। प्रोग्राम जारी रखते हुए हुन असी गलबात करांगे प्रोग्राम के अगले कॉलर के नाल। हैलो
1: हेलो वीर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, किस जगह तो बोल रहे ने?
1: सुखवीर सिंह शाजदी बोल रहा मेरे संगरूर को।
0: सुखवीर जी, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम सुगात विच। की हाल चाल है?
1: ठीक ठाक जी, वधिया। गर्मी ने बात कटे हुए ने।
0: हां बिल्कुल जी, बिल्कुल तुहाडी गल तो पूरे पूरे सहमत हां जी, पर इस चीज कुछ साडा चारा नहीं है ते रब दे रंग ने।
1: कई बार सर लाइट पग जाने रात नू तो बहुत तंग हुंदा
0: जी। जी जी,
1: लाइट कट भी लगदे ने ना
0: जी। जी सुनन च आ रहा है कि एक दो दिन च मानसून जिहड़ा वे पंजाब कोल पहुंच जाना ते नॉर्थ च मानसून दस्तक दे रहा ते थोड़ा मौसम सुखावा हो जाएगा।
1: ਹੋਰ ਜੀ ਠੰਡੇ ਜੀ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ।
0: ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਵੇਲੇ?
1: ਬਸ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖੀ ਗਿਆ
0: ਜੀ,
1: ਰੇਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਫੋਨ ਕਰ।
0: ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
1: ਹੈਲੋ
0: ਹਾਂਜੀ,
1: ਨਾਰੁਸ ਹੀਰੇ ਮੇਰੀਏ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ।
0: ਨਾਰੁਸ ਹੀਰੇ ਮੇਰੀਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਜੀ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਨੇ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ,
0: ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
1: ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਓਕੇ।
0: ਲਓ ਜੀ, ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ।

0: प्रोग्राम नूं जारी रखदे हुए आओ जी गलबात करदे आं प्रोग्राम दे अगले कॉलर दे नाल। हैलो
1: हैलो नमस्कार अमित जी।
0: नमस्कार जी, कौन सा बोले ने, किस जगह तो?
1: श्री गुरु रविदास नगर मलोट तो फकीर चंद्र सिंह।
0: बहुत बहुत स्वागत तुहाडा जी प्रोग्राम सुगात विच, की हाल चाल ने?
1: बहुत वधिया तुहाडा ही, बहुत थैंक यू साडी गल रिसीव करन
0: वास्ते। अरे साहब, साडा ते फर्ज बनदा है जी कि जेडे साडे प्यारे प्यारे कॉलर आन उहनां नूं जी आयां नूं आखीए प्रोग्राम विच ते उहनां दा स्वागत करिए।
1: बिलकुल
0: जी, उन्होंने गिद्दा पाया, गेड़ा होर दुआरे गर्मी च देखो है जी। पर जो कहते माहौल बनिया हो तो फिर गर्मी सर्दी कोई नहीं देखता, तो गिद्दा भी चलता तो भंगड़ा भी चलता। रजगने साहब, कॉल करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। तुहाडी पसंद का गीत जसबीर जस्सी के साथियों की आवाज़ों से तुहाडे तक पहुँच रहा है। अगर तुम भी प्रोग्राम हिस्सा लेना चाहते हो सानू कॉल करो 0181 23 41 171। इस गीत तो बाद तुहाडा आरजे दोस्त अमित तुहाडी सेवा में फिर हाजिर होंगे जी।

0: चटके ने मेरा दिल फटके आ निकित चलिए चलिए नी आजा नी आजा नी आजा
1: जा जा वे झूठिया झूठिया दे सर दिया बूटिया बूटिया वे जा जा वे झूठिया।

अंबाला कैंट तो गुप्ता परिवार हासी लगा रहे ने, अनमोल गुप्ता, कृष्ण गुप्ता, राधा गुप्ता, सुषमा गुप्ता तो बहुत सारे साथी, इन्हों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी।

तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊंच पगवाना। ए कथन सर्वोच्च शक्ति सर्व कला समर्थ अकाल पुरख प्रभु दी उस्तत विच उचारित ने, क्योंकि उस प्रभु दी महिमा जानन वाला ही उस प्रभु दे गुण गायन कर सकता है। जेकर कोई उस दे गुण गायन करदा भी है तां ते फिर उस प्रभु दी कृपा सदका उस दी बख्शी हुई

जिंद जान प्राण करके ही उसदे गुण गायन करदा है, वरना असी जीव किस तरह उस प्रभु दे गुणा नूं चेते कर सकदे हां। क्या गुण तेरे सार संभाली, मोहे निर्गुण के दातारे, बै खरीद क्या करे चतुराई, ए जियो पिंड सब थारे। इस शब्द का गायन कीता है भाई अमरीक सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने।

क्या गुण तेरे सार संभाली, मोहे निर्गुण के दातारे, बै खरीद क्या करे चतुराई, ए जियो पिंड सब थारे। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख सदा दयालु है, ओ दातां वंडदिया थकदा नहीं, ओ नित नवियां दातां अपने प्यारियां नू बिना किसे वितकरे दे प्रदान करदा है। इसे करके तनासरी राग विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी फरमाउंदे ने, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। इस शब्द दा गायन कीता है भाई गुरमीत सिंह शांत ते उना दे रागी जत्थे ने।

0: साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। इस शब्द का गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उना दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख प्रभु दयालु है, उस ते भरोसा रखण वाले जन उसकी महिमा नूं जानण वाले इस लोक विच माण मरतबा प्राप्त करते हैं। ऐसे ही गुरसिख सन ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी। आप बीड़ बाबा बुढ़ा जी स्थान ते काफ़ी समा विचरे। इतिहास अनुसार माता गंगा जी साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे महल साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की प्रेरणा सदका बाबा बुढ़ा जी पास बीड़ बाबा बुढ़ा जी विखे पुजे। आप जी दे मन विच संतान प्राप्ति की इच्छा सी। आप जी ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी नूं अरदास करन वास्ते बेनती कीती। बाबा बुढ़ा जी नूं अकाल पुरख ते पूरन भरोसा सी। आप जी ने अरदास कीती ते परमात्मा ते भरोसा रखदे होए माता गंगा जी नाल सहजे ही बचन कीते। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे ग्रह विखे माता गंगा जी दी कुखों साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अवतार तारिया। पूरे गुरु ने बख्शिश कीती, अर्थात उस अकाल पुरख दियां दातां नित नवियां हन। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। सरवण करदिआं इस शब्द की व्याख्या व्याख्याकार ने ज्ञानी दलेर सिंह जोश।
1: तनासरी महला पहला घर तीजा जप दे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद। जीव डरत है अपना कैस्यों करे पुकार दुख विसारन सेविया सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार रहाओ। अणदिन साहिब सेवी है अंत छड़ाए सोए सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए। दयाल तेरा नाम तरा सद कुरबाने जाऊं रहाओ। सरबंग साचा एक है दूजा ना ही कोई ताकी सेवा सो करे जाको नदर करे। तुदबाज प्यारे केव रहा सावड़े आई दे जित नाम तेरे लाग रहा। दूजा ना ही कोई जिस आगे प्यारे जाए कहाँ रहाओ। सेवी साहिब अपना अवर न जाचों कोए नानक तांका दास है बिंद बिंद चुक चुक होए। साहिब तेरे नाम विटों बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ। इस शब्द के उच्चारण करता गुरु नानक साहब जी हैं। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र अंग 660 ते सुभायमान है। राग तनासरी का पहला शब्द है। इस शब्द विच चार रहाओ के बंद आए हैं। पहला बंद है साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। इस पंक्ति विच गुरु साहब जी वाहगुरु जी की उपमा बड़े प्यारे शब्दों में कर रहे हैं कि मेरा सतगुरु

रैण दिनस प्रभात तू है ही गावणा, जी जंत सरबत नाओ तेरा त्यावणा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई जगीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सब बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुरु नवनित दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सो कहो टल गुर सेविए एनस सहज सुभाए दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए।
1: सतगुर नाम एक ले मन जपे दड़ो तिन जन दुख पाप कहो कत हो ऐ जीओ तारण तरण खेणा मातर जा को दृष्ट तार शब्द रद विचार काम क्रोध खोवै जियो जी अन्न सबन दाता अगम ज्ञान बेखे आता एन सत्यान तावे पलक न सोवै जियो जाको देख तद्रिद्र जावे नाम सो निदान पावे गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो सत गुर नाम एकले मन जपे दृढ़

वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवा। मेरा लागो राम स्यों हेत, सतगुर मेरा सदा सहाई।

0: त्रितेरथजते का जो रग रथवाओ द्वापरथ पे का सत गैरथवाओ कल जुग रथ गण का कूड़ गैरथवा हो महला पहला।
1: शाम कैसे तुम स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच समावे दिग कह रहे भरपूर राम नाम देवा मैं सूरत नाई ले प्रष्ट जाहे नानक तुम खंत रुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जाद भैया पार जात को पीला आया बिंद्रा बन में रंग किया कल मैं बेरा थर बन हुआ नाऊ खुदाई लोह भैया नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सचार पड़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पड़ सतगुरु विट्टो वारिया जित मिले खसम संभालिया जिन कर कृष्ण अंजन दिया इन नेत्री जगत निहाले।

झूठा झूठा मुख वसन नित नित होए खवार सुचे नाखे बहन ज पिंडा तोए सुचे से नानका जिन मन वसया सोए।